जिस एक रहे सब जान जान के लड़को को ताड़ो मत थाड़ो मत तू मैं बच्चे ने मारो मत माना कि गर्मी बहुत है लेकिन हाथ जोड़ के कहता हूँ बेबी जैकेट तो उतारो मत